समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है।

0: इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में

0: अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपर फूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
6: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber

पहले खिलाड़ी बन गए हैं, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल में इंग्लैंड और घाना के बीच बॉस्टन में मैच ड्रॉ रहा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुदुरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ सृजन राजपूत और कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका हमारा आज का रेनबो हेल्पलाइन कार्यक्रम का विषय है। जब भी अक्सर किसी से मुलाकात होती है तो हम पूछते हैं कैसे हो, और वहां से जवाब आता है मैं सही हूं, बढ़िया हूं, और जवाब में आप भी ऐसा ही कहते हैं कि मैं भी ठीक हूं, बढ़िया हूं। क्योंकि हमने देखा कि जब आप उससे मिले तो वो आपको स्वस्थ दिखाई दे रहा था, शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से, लेकिन क्या आपने सोचा कि उसने ये जवाब देते हुए वो थोड़ा स्ट्रेस्ड था, या फिर उसके चेहरे पर वो लकीरें, वो तनाव आपको नज़र आ रहा था? तो क्या स्वस्थ होने की परिभाषा यही है कि आप बाहरी रूप से सही हैं लेकिन आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा है, आप उलझे हुए हैं और फिर भी कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें छुपा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये विषय क्या है पूरा? और अगर हम छात्रों के संदर्भ में बात करें तो वो नव युवा, वो नवकली जिनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं, वो अभी अभी युवा हो रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, प्रेशर है उनके ऊपर एक, और इसके बीच में शायद वो कभी अपने बड़ों से बात करते हो तो वो कहते हो कि अभी तुम बच्चे हो, इसमें मत पढ़ो। कभी वो जवाब देते हो कि इतने बड़े हो गए हो, इस बात को भी नहीं समझते। वे अपने एक द्वंश की स्थिति में है, ये सब क्या चल रहा है? उनका जो ये स्वास्थ्य है, यानी उनका जो मेंटल प्रेशर है, मानसिक स्वास्थ्य है, क्या वो ठीक है? क्या हम कभी इस पर बात करते हैं कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भी समझा जाए? ओवरऑल स्वास्थ्य की परिभाषा, मानसिक स्वास्थ्य छात्रों के संदर्भ में, इस विषय को आज हम जानेंगे हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा से, जो कि हैं लॉ एक्सपर्ट। स्वागत करते हैं मैम, नमस्कार।
2: नमस्कार सृजन, बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस पेशकश में मुझे शामिल करने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने के लिए। जैसे कि आपने जो प्रश्न किया है कि आज के टाइम पे मानसिक जो स्वास्थ्य है उसमें जो इंस्टीट्यूशन है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वो क्या भूमिका है उनकी और कितना योगदान है उसका स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ में।
1: बिल्कुल, ये हमारा विषय है और इस पर बातचीत शुरू करने से पहले, से स्थापित करने से पहले अपने श्रोताओं को भी कार्यक्रम का हिस्सा बना लें। विषय से संबंधित आपका यदि कोई सवाल है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन में, तो आप हमसे अपने प्रश्नों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर है 9868107070, 9868107070। दो फोन लाइन अवेलेबल है जिनके जरिए आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, यानी हमारी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। 01101011 दिल्ली का STD कोड लगाएं और उसके बाद नंबर डायल करें 2342108080, और दूसरा नंबर है 2342108082, 2342108023421082। तो सबसे पहले श्वेता मैम, प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा से जानते हैं कि स्वस्थ होना और मानसिक स्वास्थ्य से हमारा क्या संदर्भ है, और जब छात्रों से हम इस विषय को जोड़ते हैं, छात्रों के संदर्भ में हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करने जाते हैं, और फिर इस ट्रायंगल का एक हिस्सा है संस्थान, समाज, पेरेंट्स, टीचर, स्कूल, कॉलेजेस, इस पर हम अपने विषय को समझते हैं।
2: जी देखिए, जो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग है, जो हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आज के संदर्भ में, क्योंकि आज का जो जीवन शैली है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, और उसमें जो शैक्षणिक संस्थान हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करते हैं। पहले हम समझते हैं कि जिस मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसका अर्थ क्या है। मानसिक स्वास्थ्य मीन बहुत एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे जो लाइफ है उसके हर एस्पेक्ट को वो टच करता है। चाहे हमें ये समझना हो कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हमारी सोचने की शक्ति है, या फिर हमारा स्लीप पैटर्न कैसा है, तो इसको अगर हम समझेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली, अगर आप स्वस्थ हैं
1: जी,
2: तो वो मेंटल हेल्थ, हम उसको, उसका जो अर्थ है कि अगर आप स्वस्थ हैं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली अगर आप स्वस्थ हैं. और उसमें आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे कि जो संशोधन हैं वो ये कहते हैं कि जो 65 से 70% जो है, जो उसमें कि जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि जो व्यसक हैं, 60-70% जो व्यसक, अगर हम बात करें 18 से 34 वर्ष की आयु तक, यानी
1: यंगस्टर्स हमारे,
2: हाँ, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, किसी मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, अकेडमिक प्रेशर हो, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है. तो ये बहुत सारे ये मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जो छात्र हैं, स्पेशली जो छात्र, मैंने 18 से 34 वर्ष के आयु के व्यस्कों की मैंने जो बात करी है, वो किसी ना किसी जो परेशानी है, जो हम डिप्रेशन,
1: कोई मानसिक अवसाद है,
2: हैं, जिसकी वजह से वो जूझ रहे हैं. तो मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि हमारी जो जीवन शैली है बहुत तेजी से बदल रही है, और उसके साथ साथ जो हमारा फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, और साथ के साथ जो सबसे ज्यादा व्यसक आज के टाइम में आप एक चीज देखते हैं कि जो यंगस्टर हैं, चाहे वो आप हैं या मैं भी हूं इस उम्र में भी, ज्यादा वो किसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करते हैं. आज के टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना डिफिकल्ट नहीं है, हम एक हम पूरे संसार के साथ एक सेकंड में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक छात्र है वो कहीं ना कहीं वो जो आइसोलेशन है, जिसको हम सोशल आइसोलेशन है, वो बहुत बढ़ती जा रही है हमारे समाज में. तो ये जो मुख्य कारण है, आई थिंक इस पे विचार करना और इस पे जो इंस्टीट्यूशन की इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत अहम हो गई है कि जो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इस पे काम करें. और क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे, आज से अगर हम 10 साल पहले बात करें, जो साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने इस पे बात करी कि हमारा जो यूथ है उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ट्रबल में है.
1: जी,
2: उन्होंने ये अलार्म रेज किया था कि द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट इज इन ट्रबल.
1: राइट.
2: तो इस पे जो हम तो इसीलिए, क्योंकि देखिए अगर पहले इंस्टीट्यूशन की आप भूमिका को अगर आप देखते थे तो एकेडमिक एक्सीलेंस था जो इंस्टीट्यूशन का जो फोकस था, वो दी एकेडमिक एक्सीलेंस था, परिणाम बेस्ड था, सक्सेसफुल जो इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस करना था. लेकिन आज के टाइम पे जो भूमिका है, जो इंस्टीट्यूशन की जो भूमिका है, उसमें चेंज हो रहा है. उसमें इंस्टीट्यूशन को बहुत स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग जो यूथ का निर्माण करना है.
1: बिल्कुल सही कह रही है मैम. और क्योंकि यही युवा आगे चल के हमारा भविष्य होंगे, तो ज़रूरी है कि इन्हें मजबूती से तैयार किया जाए, और सिर्फ इनको शारीरिक रूप से ही नहीं, इन्हें मानसिक रूप से भी स्वस्थ ही तैयार किया जाए. ये हमारा आज का विषय. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स. इस विषय को आज हम जान रहे हैं हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा से. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक होगा जो कहता है फर्स्ट क्लास है. तो ये कहने के लिए भी आपको मेंटली और शारीरिक तौर से भी, और आपको फिजिकली भी बिल्कुल तैयार होना होगा, स्वस्थ होना होगा.

0: जी हाँ, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ऐसा कहने के लिए आपको फिट होना होगा, और फिट होना सिर्फ आपका फिजिकल फिट होना नहीं होगा, यह आपका मेंटली भी फिट होना होगा। सर, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेनबो हेल्पलाइन आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। बात कर रहे हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका विषय पर। हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनीचा। तो श्वेता मैम, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, सबसे पहले इनका प्रश्न लेते हैं और उसके बाद आगे के इस विषय पर जो प्रश्न बनते हैं उन पर भी चलेंगे। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना परिचय
1: जी।
0: दें।
1: नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी, परिचय दें अपना।
1: जी अमित चारी बात कर रहा हूँ, ग्राम नंगोला आपको यूपी से।
0: जी अमित जी, स्वागत है, आप अपना सवाल बताएं।
1: जी जी मैम, श्वेता मैम से मेरा ये सवाल है। नमस्कार मैम।
2: नमस्कार,
1: ये सवाल है
2: जी,
1: मेरा सवाल ये है कि जब छात्रों को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खान पान में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया है अमित जी आपने, हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो खाना है वो एक तरीके का फ्यूल है, क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, जैसे गाड़ी चलने के लिए उसको फ्यूल चाहिए, ऐसे दिमाग को चलाने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में चाहे आप ओमेगा 3 की बात करें, विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, हेल्दी फैट्स की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी माइंड को वर्क करने के लिए। तो इसी के साथ साथ इसी प्रोग्राम के माध्यम से और आपके प्रश्न के माध्यम से हम अपने लिसनर्स को यही बताना चाहेंगे कि जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म्स हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो ब्लड शुगर है वो बहुत स्पाइक होता है, कि जो स्ट्रेस हार्मोन है उससे इंक्रीज होते हैं। तो इसलिए अगर कोई मेंटल हेल्थ पेशेंट है, कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो उनको जिसमें ब्लड शुगर स्पाइक होता है, प्रोसेस्ड फूड है, उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: ठीक है, तो अमित जी आई एम श्योर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और श्वेता मैम, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने फूड पर भी बात की, तो ऐसे में कुछ अर्ली साइंस भी तो है जिनके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि कोई छात्र जो है वो तनाव, चिंता या एंजाइटी से ग्रसित है। मीन्स क्या साइंस होंगे, क्या लक्षण उस पर्सन में नज़र आ रहे होंगे?
2: जी जी देखिए, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना कि जो एक छात्र है वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत एक सेंसिटिव एरिया है और ये बहुत हिडन एरिया है। इस पे अवेयरनेस लोगों में अभी बहुत कम है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, कई बार उनको भी नहीं ये पता चलता, अभिभावकों को भी नहीं ये पहचान पाते हैं कि घर में जो उनका बच्चा है वो किसी एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जो अभिभावक हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी उनको किसी स्टेज पे ये लगता है कि जो उनका बच्चा है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, स्लीप डिसऑर्डर है, या फिर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, तो उसके ये हम अर्ली साइंस बोलते हैं। लेकिन अगर इसको जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, तीन विभागों में इसको बांटा है, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर, इमोशनल और फिजिकल कैटेगरी। तो बिहेवियर में सबसे पहले ये है कि अगर आप सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, सोशल विड्रॉल है कि जैसे घर में गेस्ट आए हुए हैं लेकिन जो बच्चा है वो अलग से जाके कमरे में बैठ जाता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, स्कूल जाना या कॉलेज जाना कम कर देता है या बंद ही कर देता है, इवन यूज ऑफ अल्कोहल, ये भी कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, फिर हम बात करें अगर इमोशनल डिस्ट्रेस की, अगर हम बात करें तो उसमें कहते हैं कि जैसे मूड स्विंग्स हैं, एंगर बहुत ज्यादा बच्चे में बढ़ गया है या फियर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको हम इमोशनल डिस्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा, फिर फिजिकल कैटेगरी में है स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, या फिर कोई बॉडी एक है या बॉडी पेन है, हेडेक है, तो बेसिकली ये एक अर्ली साइन है जिसको एक लेमैन भी पहचान सकता है सिर्फ एक बातचीत के माध्यम से, कि क्या जिससे हम बात कर रहे हैं या हमारा बच्चा है या एक छात्र है, कहीं वो किसी जो मानसिक तनाव है उससे तो नहीं जूझ रहा।
0: बिल्कुल, मैम आगे बढ़ते हैं और यहाँ अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि हमारा विषय है, हम इंस्टीट्यूशंस के रोल पर भी बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को मजबूती दे सकती है, प्रभावित करती है, क्या कदम होने चाहिए, आते हैं विषय पर।
2: जी देखिए, आपने अक्सर यही देखा होगा जब भी हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हों, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल हों, कॉलेजेस हों, तो हम अक्सर जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है या शैक्षणिक संस्थान है उनकी जो भूमिका है या उनको जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो उनकी परिणामों से करते हैं
0: जी,
2: राइट तो लेकिन आज के समय में ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ की ग्रोथ में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे इसमें मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली 2025 में जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिए हैं और UGC ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके लिए जो मेंटल हेल्थ है उसको उनको प्राथमिकता देनी चाहिए
0: जी।
2: उसके लिए उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन्होंने ये मैंडेटरी किया है, जो गाइडलाइंस हैं या जो दिशा निर्देश हैं कि हर इंस्टीट्यूशन में एक काउंसलर, एक काउंसलिंग जो सर्विस सेंटर है वो सेटअप किया जाए जहाँ पे एक परमानेंट काउंसलर होना चाहिए
0: जी।
2: जो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए और साथ के साथ वो अपना एक जो पॉलिसी है हर इंस्टीट्यूशन को एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो है वो एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रिपेयर करना है। साथ के साथ उन्होंने जो जोर दिया है UGC ने वो जोर दिया है मेंटर और मेंटी प्रोग्राम पे। जैसे हम पहले के समय में जो हम गुरु और शिष्य की जो प्रथा की हम बात करते थे, आज के टाइम पे भी UGC ने इस पे जोर दिया है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रमोट करे मेंटर मेंटी को, गुरु शिष्य की परंपरा को आगे लेके जाए, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करे, जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करे। और उसके साथ के साथ क्योंकि जो बुलिंग के केसेस हैं या जो एंटी रैगिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होना चाहिए और साथ के साथ एक ग्रीवियंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क भी रेडी होना चाहिए कि जिससे साथ और लाइफ स्किल पे भी जोर देना चाहिए। तो ये मुख्य दिशा निर्देश हैं जो UGC ने हर शैक्षणिक संस्थान को दिए हैं ताकि वो जोर दे सकें ताकि वो मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकें।
0: जी मैम, जिस नैरियो की हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल आज का समय है, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि इतना सब नहीं था, ना तो इस बारे में इतनी बात होती थी और ना ही ये कि इस तरह से संस्थान की तैयारियां करवाई जाती थी, क्योंकि अनटिल अनलेस पहले तो यही था कि रिजल्ट आना चाहिए, आपको एक आउटपुट देना है, डिग्री देनी है, सिर्फ यहीं तक बात होती थी। लेकिन अब क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज को लेकर अलर्ट हैं कि नहीं, हमें बच्चों की ओर भी ध्यान देना है कि उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही दिशा में रहनी चाहिए।
2: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सृजन। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे, जैसे हमने पहले भी अपनी चर्चा में जिक्र किया कि जो सोसाइटी है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आज से आप 10 साल पहले जाएंगे तो इस पे हम बात भी नहीं करते थे
0: जी।
2: इस पे कोई इतनी चर्चा नहीं थी, इस पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। इसकी जरूरत देखिए वो सबसे ज्यादा जो मैं देखती हूँ, जो मैं अपने टीचिंग करियर में मैं देखती हूँ, इसका जो बदलाव है उसके जो मुख्य कारण है, एक तो हमारी जीवन शैली में बढ़ता हुआ बदलाव है, जो एक पारिवारिक जो चेंज है, और साथ के साथ जिस पे हम बात करते हैं जेनरेशनल डिवाइड की, जिस पे हम बात करते हैं वो, क्योंकि पहले के समय में और आज के समय में अगर आप देखेंगे, और इसको मैं सबसे ज्यादा मैं लिंक करती हूँ, हमारा सोशल मीडिया
0: जी
2: बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो इमोशनल डिस्कनेक्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले क्या होता था कि जो बच्चे थे घर में, जो हमारा जो परिवार का जो स्ट्रक्चर था वो जॉइंट फैमिली थी।
0: जी
2: घर
0: बिल्कुल
2: में कोई ना कोई होता था, कोई बड़े होते थे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नाना नानी, दादा दादी, वो एक
0: बिल्कुल
2: जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अगर स्टूडेंट को, अगर बच्चा है, अगर किसी ना किसी परेशानी थी तो घर में कोई होता था उसको सुनने के लिए।
0: बिल्कुल, चाहे
2: आज
0: उसका वो जो रिश्ता है वो उसके दादाजी के साथ बेहतर हो सकता है, उसके बड़े भाई के साथ, कोई ना कोई तो था।
2: था,
0: बिल्कुल
2: अभी क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर फैमिली में है। सब पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं, मदर्स भी वर्किंग हैं, फादर भी वर्किंग हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो जो टाइम, जो फैमिली, जो टाइम है वो बहुत सिकुड़ता जा रहा है। पेरेंट्स बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं किसके साथ कनेक्टेड है, वो सोशल मीडिया से बात करते हैं,
0: जी
2: वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट बॉट है वो उनसे अपनी बातें जो शेयर करते हैं। तो ये इसीलिए ये एक इतना इम्पॉर्टेंट विषय हो गया है कि जिसपे कि हमें जो शैक्षणिक संस्थाओं की जो भूमिका है, क्योंकि बच्चे 7 से 8 घंटे जो हैं वो अपना जो मुख्य जो टाइम है वो
0: जी
2: अपने शैक्षणिक संस्थान पे व्यतीत करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो रोल है वो बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल। हमारा आज का विषय रेनबो हेल्पलाइन, आप सुन रहे हैं रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका। आप भी जरूर अपना प्रश्न भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। फोन लाइन्स अवेलेबल हैं 0112342108, 0112342108। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने

0: नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से भी। कार्यक्रम है रेनबो हेल्पलाइन। आज का विषय, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका। बातचीत जारी रहेगी प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा से। आइए ये प्यारा सा गाना सुनते हैं।

0: बहुत जरूरी है कि वो सभी बातें जो कि आपको पॉजिटिव करती हैं, सकारात्मक करती हैं, आप सुने, उन गानों को भी जरूर सुनिए और प्रयास कीजिए कि उससे आप जीवन में उतारें उन शब्दों को, उन प्रयासों को जीवन में उतारिए जो कि आपको सही दिशा दिखाते हों, सिर्फ आपके शारीरिक तौर पर ही नहीं, आपको मानसिक मजबूती देने के लिए भी वो शब्द काम करते हों। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन, हमारा विषय रूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं और अपने श्रोताओं के प्रश्नों को हम इस सत्र में शामिल करते हैं। मैम, पहला प्रश्न लेना चाहूंगी, हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता। सो मैम, राजेश कुमार जी हैं जालंधर से, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे विषय पढ़ाए जाएं जो उनमें सकारात्मक ऊर्जा भरें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या शिक्षा संस्थानों, कोचिंग संस्थानों को इसके लिए काम नहीं करना चाहिए? मैथ, साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि प्रेरित करते हों, वो बताने चाहिए, वो होने चाहिए, जिससे कि मेंटल हेल्थ को और स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथन।
1: राजेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मेंटल हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, उन इंस्टीट्यूशन का जो फोकस है वो और भी सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, इससे पहले मैंने अभी आपसे जो UGC के दिशा निर्देशों पे मैंने बात करी, जिसमें UGC ने ये जोर दिया शिक्षा संस्थान जो लाइफ स्किल है, जो एजुकेशन है, वो उसको भी प्रमोट करे और अपने करिकुलम का पार्ट बनाए
0: जी,
1: जिसमें कि जो स्टूडेंट है, ताकि वो जो स्टूडेंट है वो अपने जो डिसीजंस हैं वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली ले पाएं, और जिंदगी में अगर कोई वो चैलेंज फेस करते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको अच्छे से फेस कर पाएं। और साथ के साथ जो आजकल हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, क्योंकि हम इमोशनल डिस्कनेक्टेड हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को भी करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन की हम बात करते हैं, हालांकि अगर आप देखेंगे हमारे स्कूल लेवल पे जो वैल्यू एजुकेशन है, अगर आपने भी जब स्कूल में पढ़ाई की होगी, हमने की होगी, जो सुबह की प्रार्थना होती थी स्कूल में
0: जी,
1: राइट, तो उसमें कुछ ना कुछ जो वैल्यू एजुकेशन थी वो इनकलकेट होती थी स्टूडेंट
0: में। बिल्कुल,
1: राइट। और साथ के साथ अगर हम बात करें जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल एजुकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं इसमें राजेश जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इन वाले, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, इन पे जोर देना बहुत जरूरी है, कि अगर हमें मेंटल हेल्थ की जो एक ये जो प्रॉब्लम है जो एक समाज में बढ़ती जा रही है, अगर हम इसकी रोकथाम करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें इनको अपने करिकुलम का पार्ट, मैंडेटरी जो पार्ट है वो बनाना होगा, कहीं ना कहीं, चाहे वो हफ्ते में एक घंटे की क्लास हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो होनी चाहिए।
0: जी मैम, बहुत सराहनीय जवाब दिया है आपने इस प्रश्न का। एक और प्रश्न लेते हैं, ये पैंथर तोमर जी हैं किशनगंज दिल्ली से, हमारे श्रोता। ये कहते हैं कि मैं कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर चुका हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं आया तो आखिर में हताश हो जाता हूँ, परेशान होता हूँ, और कई बार मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, और वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, वो स्टडी

0: हब्स में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा होता है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए?
1: जी पेंथर जी, जो आपने सवाल किया है, जो आपका प्रश्न है, वाजिब है, बिल्कुल है। ये अगर आपके साथ हो, ये मेरे साथ हो, ये बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल है कि हम अगर जितनी हमने परीक्षा की तैयारी की है, अगर हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंट होना स्वाभाविक है। वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो सैडनेस है वो बहुत स्वाभाविक है
0: जी।
1: तो इसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले पैंथर जी को ये बताना चाहूंगी कि इसको कॉप अप करने के लिए देखो, आपको जो बात है, जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट है या सैडनेस है, वो आपको अपने तक नहीं रखनी है, आपको वो शेयर करना है। जैसे आज आपने हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करी है, ऐसे ही आपको बात करनी है। बात करना मेंटल हेल्थ में, जब हम डिसअपॉइंट होते हैं या एग्जाइटी या डिप्रेशन किसी भी मेंटल स्थिति में होते हैं, तो हमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करिए अपने पेरेंट्स से, बात करिए अपने टीचर से, फ्रेंड से, मेंटोर से बात करिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कंपेयर मत करिए अपने आप को। आपको कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ, बल्कि आपको इस पे ध्यान देना है कि मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। बस आप अपने स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको अच्छे से नींद लेनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, जिम जाइए, योगा करिए, इन पे ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और कम से कम जो आप अपना जो समय है, वो जो स्क्रीन टाइम है, वो आपको कम करना है। तो जिससे आप ऑटोमेटिकली, आप देखेंगे कुछ दिनों में आप अपने अपने अंदर एक चेंज जो है वो फील करेंगे। वैल्यू एजुकेशन जो है, अपने आप को मोटिवेट करिए कि मैं इंप्रूवमेंट अपने में कैसे ला सकता हूँ।
0: बिल्कुल मैम, अगले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहूंगी। देखिए, अगर हम एक पूरा सिनेरियो देखें जहां पर संस्थान है, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स, टीचर्स सब हैं, वहां पर एक आपको शैक्षणिक दबाव मिलेगा, एक कंपटीशन मिलेगा, और साथ ही आपको जो है एक सोशल मीडिया इमेज क्रिएशन, मीन्स जो हम सोशल मीडिया वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं, वहां पर हमारी क्या इमेज है, उसे मेंटेनेंस को लेकर भी एक दबाव मिलेगा। साथ ही अगर हम अब बिल्कुल रियल लाइफ में देखें, स्टूडेंट्स जब किसी न्यूली जाते हैं किसी संस्थान में, बुलिंग, रैगिंग, कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम पर, इन सब पर बात करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने जो आज के टाइम पे बात करी, मैंने आपसे, हमने अपनी इस चर्चा में पहले भी जिक्र किया कि जो कारण है, जो जैसे मानसिक, क्योंकि पहले तो ये नहीं था, लेकिन अब कारण बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है
0: जी?
1: मुख्य वजह कई हैं इसके। जो मुख्य वजह में हम बात करते हैं, जैसे अगर स्कूल से या कॉलेज से विड्रॉल होता है, उसमें बुलिंग या रैगिंग है। देखिए, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, जो एंटी रैगिंग स्क्वाड है, एंटी रैगिंग अभी आज के टाइम में इसको हम क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं, इसके लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे केसेस आते हैं। हालांकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे मैंडेटरी दिशा निर्देश हैं जो जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जो उनको रेगुलेट करते हैं,
0: राइट?
1: तो उसमें इनको जोर दिया गया है कि कैसे हम इनको कम कर सकते हैं। देखिए, खत्म करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें अवेयर करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयर करना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा इंसिडेंट आता है, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट, अगर जैसे कॉलेज में फर्स्ट डे है उसका, या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे है, एडमिशन लेता है, अगर उसके साथ कोई रैगिंग या कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर किसी की भी तरह का कोई बुलिंग है, वो साथ के साथ उसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट करना किसी भी उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास उस इशू को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इनकी जो टाइम टू टाइम जो रोकथाम है वो की जा सके।
0: जी, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था जिसमें मैंने आपसे जानना चाहा कि इंस्टीट्यूशंस या संस्थान क्या कर सकते हैं जब जो प्रतिस्पर्धा है या फिर अचीवमेंट का लेवल बहुत हाई है, स्टूडेंट्स पर प्रेशर है, क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जो संस्थान है, जैसे मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, पहले तो ये है कि सबसे पहले मैंडेटरी काउंसलिंग सर्विस सेंटर सेटअप होना चाहिए, जहाँ पे फुल टाइम एक काउंसलर होना चाहिए।

0: पे ये जोर देती हूँ बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि हमें साथ के साथ जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस कहाँ पे किस लेवल पे होनी चाहिए, नॉट ओनली अमंग द टीचिंग स्टाफ, हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पहचान पाए. देखिए हम सबसे, मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये ऐसा विषय है कि आप जब तक अवेयर नहीं है आप सामने वाले की मनोस्थिति को नहीं समझ पाते कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है. तो उसके लिए जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ के प्रति. तो वो जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक हम इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर नहीं पाएंगे.
1: मैम यहीं पे एक प्रश्न और जानना चाहूंगी. आपने कहा कि एक काउंसलर होना चाहिए लेकिन एक स्टूडेंट और उस काउंसलर के बीच में जो ये एक वे है, ये जो मार्ग है, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उन तक पहुंचने का, वो कैसे प्रशस्त किया जा सकता है कि वो मजबूत हो, हम इजीली अपनी बात वहां तक पहुंचा सके और हमें पता है कि शायद उस कमरे तक जाते हुए, उस पर्सन तक जाते हुए हमें बहुत सारे लोग देख रहे हों.
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया. और ये है भी क्योंकि हमने मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको, जो हमारा नजरिया है, हमारा क्या समाज का जो एक नजरिया है, हम उसको एक टैबू की तरह समझते हैं, स्टिग्मा, क्योंकि हम लेबल करते हैं, हम जज करते हैं. तो कहीं ना कहीं जो एक जो छात्र है जो इस से जूझ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक घबराहट है वहां तक, उस कमरे तक जाने के लिए, उस काउंसलर से बात करने के लिए. तो ये जो दूरी है इस दूरी को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरी है, जैसे आप और मैं आज कर रहे हैं. और साथ के साथ ये इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको अवेयर करें थ्रू ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स, ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ पे बात करें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में.
1: बिल्कुल.
0: तो ये सबसे बड़ा जो हमारा जो बैरियर है, लैक ऑफ हेल्प नहीं है बैरियर, आस्किंग फॉर हेल्प है.
1: बिल्कुल,
0: ये सबसे बड़ा बैरियर है. इस बैरियर को हमें कम करने की ज्वाइंट एक एफर्ट करने की एक जरूरी है, जिसमें कि सबका एक ज्वाइंट एक योगदान होगा, तभी हम एक सशक्त जो समाज है उसका निर्माण कर पाएंगे.
1: बिल्कुल. हमारा रेनबो हेल्पलाइन कार्यक्रम का आज का विषय है रूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स. एक छोटी सी ब्रेक के बाद विषय पर आगे बढ़ते हैं.
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
3: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
4: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका.
5: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका.
6: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
5: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ.
7: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ सृजन राजपूत। विषय है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका। मैम, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, आप एज अ लॉ एक्सपर्ट आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भारत में, हमारे अपने देश के कंटेक्स्ट में ही बात करें, तो कोई ऐसा कानून है जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता हो, छात्रों को सपोर्ट करता हो कि हाँ, यदि इस व्यक्ति विशेष की अभी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ किया जाना चाहिए संस्थानों की ओर से भी? क्या रास्ता है, कैसे उस मदद तक पहुंचा जा सकता है?
1: जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास, हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य से लेके एक बहुत पुख्ता और एक अहम कानून है जिसको हम

0: मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017
1: ठीक है
0: के अंदर जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसके पास राइट है. नॉट ओनली छात्र, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट एक्सेस टू अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर. और उसमें उसमें ये भी प्रावधान है कि अगर कोई भी ऐसा सिटीजन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई एडल्ट है, कोई भी मेल है, फीमेल है, उसको ट्रीट किया जाए डिग्निटी के साथ,
1: ठीक है,
0: उसको जज ना किया जाए, उसको लेबल ना किया जाए, और साथ के साथ उसकी जो डिग्निटी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको मेंटेन किया जाए और उसको किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए. और उसको और उसको हमें प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है उसके ट्रीटमेंट की, प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है उपचार की, जो प्रॉपर जानकारी है वो प्राप्त करने का उसके पास अधिकार है. तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आज के समय में मेंटल हेल्थ पे हमारे पास एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, साथ में इंस्टीट्यूशन के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस, निशा निर्देश, और सुप्रीम कोर्ट में अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का निर्णय. ये इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उस निर्णय ने जो एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म किया है, और उसने जो फोकस किया है कि जो इंस्टीट्यूशन को की जो अप्रोच होनी चाहिए वो एकेडमिक सेंट्रिक ना होके स्टूडेंट सेंट्रिक जो अप्रोच होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए. क्योंकि उससे क्या होगा कि जो हेल्दी माइंड है, मैं इसके प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बोलूंगी कि जो हेल्दी माइंड है बिल्ड हेल्दी सोसाइटी, एंड हेल्दी सोसाइटी बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन. तो इसीलिए जितने भी जो भी हमारे जो छात्र हैं उनको किसी भी लेवल पे घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे ज्यादा जो इसमें जो जरूरत है वो बात करने की जरूरत है.
1: आप बार बार इस बात पे जोर देती हैं कि बात कीजिए, जागरूक रहिए, बहुत जरूरी है कि आप अवेयर भी हों.
0: हाँ, और इसमें जागरूकता के साथ साथ ये है कि अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना है, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. ये एक टेम्परेरी फेज है जो कि शायद बात करने से ही खत्म हो जाएगा लाइफ में. स्क्रीन टाइम कम करिए, पेरेंट्स के साथ समय बताइए, फ्रेंड्स के साथ बात करिए, उसके साथ अपने पीयर्स के साथ बात करिए, अपने टीचर्स के साथ बात करिए. क्योंकि आज का जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, मैं इसका पार्ट हूँ लास्ट 25 ईयर्स से, अब वो बहुत चेंज हो गया है. जो स्टूडेंट और टीचर का जो गैप है वो डे टू डे कम होता जा रहा है. पहले एक गैप था कि स्टूडेंट जो था वो टीचर के सामने जाने से पहले थोड़ा हिचकिचाता था, घबराता था, लेकिन आज का जो समय है वो इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसमें क्या है, टीचर बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रहे हैं. तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि फ्रेंड मुझे जज ना कर ले, तो आप अपने फैकल्टी से बात करिए, टीचर से बात करिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंस्टीट्यूशन लेवल पे इतना सपोर्ट मिलेगा कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होता देखेंगे.
1: मैम, कार्यक्रम में अपनी बातचीत के जरिए आपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए, पूरा बताया. लेकिन अब ये जो एक ट्रायंगल बना है जिसमें स्टूडेंट्स तो बीच में है, इंस्टीट्यूट्स है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, तो इन सबको कैसे ब्रिजिंग किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, कैसे ये सब मिलकर काम कर सकते हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक दिशा देने के लिए.
0: जी, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये तीनों ही जो ये जो ट्रायंगल है, पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशन और टीचर्स, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं.
1: सबसे पहले सुझाव, उपाय और संदेश के साथ इस बात को हम लेकर चलते हैं.
0: जी, तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम पे, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, अब कजन्स के साथ कंपेयर करते हैं, दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये है जो दिशा निर्देश हैं, एक तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, उनको अपने घर का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से करना है, क्रिएट करना, इतना सेफ और इतना सिक्योर करना है कि जो उनका जो बच्चा है वो उनसे बात कर पाए. क्योंकि अगर उसमें गैप होगा, अगर पेरेंट्स बार बार कंपेयर करेंगे, तो जो, क्योंकि देखिए बच्चा इंटाइटल्ड है लव एंड अफेक्शन के लिए, वो किसी भी ट्रॉमा का इंटाइटल्ड नहीं है. क्योंकि अगर आप उससे ऐसी बात करेंगे तो वो ट्रॉमा में आ सकता है. तो इसीलिए जो स्टूडेंट है तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो दिशा है वो यही है कि उनको जो पेरेंट्स हैं उनको कंपैरिजन नहीं करना है.
1: जी, बेहद शानदार बात कही आपने, वो

0: और मुझे लगता है हमारे आज के सभी श्रोताओं के लिए आज की जीवन शैली को देखते हुए ये एक बहुत परफेक्ट संदेश था। तो इसी बातचीत को अब हम इन सकारात्मक शब्दों के साथ अंत पर लेकर चलते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा, लॉ एक्सपर्ट। मैम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने ये बातचीत की और आपसे मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।
1: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। हमारा विषय, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं हूं सृजन राजपूत। अब आप दीजिए अनुमति और सुनते रहिए कार्यक्रम रेनबो के साथ। और अगला कार्यक्रम आशियाना होगा स्वाति गुप्ता के साथ। नमस्कार।

कविता कृष्ण मूर्ति और अभिजीत की रेशमी आवाजें अभी आपने सुनी फ्रॉम द मूवी ग्रहण 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। प्रोग्राम आशियाना लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति आप सभी के साथ। और जितनी खूबसूरत बातें इस गाने में कही गई ना, मैंने सोचा शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आशियाना का ये जो बुधवार का खास एडिशन होता है, इसको हम कदम के नाम से जानते हैं। और इसमें हम बात करते हैं आपके हम कदम की, आपके हम सफर की, जिंदगी के सबसे खूबसूरत सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते की। तो इतने प्यार से जब कोई आपकी तारीफ करता है ना, और जब कोई इतने प्यार से आपको अपनी आपकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी की जिंदगी में वो बताता है, तो वाकई में एक बहुत बड़े पावर बूस्टर का काम करता है किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए। अगर नहीं यकीन है तो आज ये ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि एक्सप्रेशन बड़ी ही खूबसूरत चीज है। और एक्सप्रेस करना अपने आप को, हालांकि हर इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने मन में कुछ भी महसूस करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करना बनता है, खासतौर पर अच्छी बातें। गुस्से में तो मुंह से हर बात निकल ही जाती है ना, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको मन में दबाकर भला हम क्यों बैठे रहते हैं, खासतौर पे जब वो हमारे लिए इतनी काम की हो। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूं आप सभी के साथ स्वाति, और मैं आप सभी के लिए प्ले करने जा रही हूं एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना। आप चाहें तो गानों की भी मदद ले सकते हैं, हमारे जो हिंदी गाने हैं ना, हिंदी फिल्मों के, वो ऐसे में आपके बहुत काम आते हैं। तो गाने के जरिए भी आप अपने बात को कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके अलावा आपके अपने शब्द तो है ही।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
5: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
6: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
7: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
6: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
8: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो
5: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम मेरे यानी कि स्वाति के साथ। बात हो रही थी कॉम्प्लीमेंट्स की, बात हो रही थी अच्छी बातों को एक्सप्रेस करने की, और अक्सर हम लोग ना यहीं पर तो चूक जाते हैं। अगर हम अपनी अच्छी बातें जो हैं, जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, हम नहीं कहते हैं, तो रिश्तों को वो मजबूती भला कहाँ से मिलेगी जी, जिसकी हम इच्छा करते हैं, जिसकी हम आकांक्षा करते हैं। भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं या फिर अपनी अच्छी बातें जो है ना, दिल की बातें जो हैं, उसे कह देने से आपके रिश्ते को एक पावर बूस्टर जैसा जो है ना, वो काम तो वो करती ही है, मगर उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छा मूड चेंजर भी है। बात बदलनी हो ना तो तारीफ से अच्छा कुछ नहीं होता है, कभी आजमा के देखिएगा। इसके साथ साथ बॉन्डिंग तो मजबूत होती ही है, अटैचमेंट जो है बढ़ती है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, क्या होता है, रिश्ते को वो मजबूती मिलती है कि छोटे छोटे जो झटके लगते हैं ना अक्सर जिंदगी के, और हमारे रिश्ते जो हैं उस स्ट्रेस में आ जाते हैं, उन चीज़ों से छुटकारा पाने में ना बहुत मदद मिलती है। आपके साथी का कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, मगर उसके साथ साथ उसको एक इमोशनल सिक्योरिटी जो होती है ना, वो भी हासिल होती है। देखिए ना कितने सारे फायदे हैं, और अगर ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान में रखें तो हमारे रिश्ते को कोई भी मजबूत होने से नहीं रोक सकता। फिलहाल आपका और मेरा रिश्ता जो है ना, वो हमारा जो है आज थोड़ा सा हमें समय ज़रूर कम मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रिश्ता जो आपका हमारा और रेनबो का है, ये सदा जो है इसी तरह मजबूती से बना रहेगा। फिलहाल आज का हम कदम समाप्त करने की स्वाति को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, और थोड़ी देर में आप सुनेंगे खास कार्यक्रम। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: शब्दांक
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और W सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियाँ पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओ, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओ, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओ, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओ, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
3: Yes!
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
3: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
3: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
3: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
3: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
3: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
3: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करती।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी

0: एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है।
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुलके।

0: मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
0: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
0: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
0: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
0: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
0: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने

0: जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मूवी लदम दो कस्मे,
1: वो फिल्म लगा नाम कश्मीर वाली, अब
0: कस्मे
1: आता तो सब
0: वर्दी के इतु, अच्छा कस्मे वादे, अच्छा, टाइटल सॉन्ग ना, अच्छा, ठीक है से, मैं इतु पैसे तो डेडिकेशन नस्ता ना अपनी,
1: इधर मकान घुमा हुए ना से मकान सब अनुभव आ रहा हंडिया मानो कन करने
0: अच्छा तो मुझका फॉर कॉलिंग,
1: सब ओके ठीक है सर बाय
0: ओके देन, बाय बाय. Hi listeners, you're the first caller to Asia. And yes, applicant have number 0370-224-30360. Apni ka request dedication thakile to mugi kuiri bhi mugi bisari na pare tak bachai dibo. To itia khuni bo from the movie Kasme Vade. Ito title song ase Kanakuri di she Lata Mangeshkar Kishore Kumar. Music Arti Burman. Lyrics Gulchand Maura. Ari the movie de apni ka dikhi ho Amitabh Bachchan, Rekha, Randhir Kapoor and Neetu Singh. Hunikina enjoy kuri bhi.

0: Hello, good evening.
1: हेलो सर।
0: हेलो,
1: मैं सर
0: तनुश्री बोल रहे हैं ना?
1: नहीं सर, मैं सुनीता।
0: अच्छा, सॉरी। अच्छा सुनीता, कैसे हो?
1: अच्छी हूँ, आप कैसे
0: और बोले,
1: हैं सर?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं आज।
1: हाँ,
0: और वेयर आर यू नाउ?
1: बुकेशन।
0: ओ, बुकोचान।
1: हाँ सर,
0: गौरव ना तो देना पानी गिर।
1: पानी तो गिरा नहीं, गोबर ठंडा इनके ऐसे।
0: ओ, बोले तो बोल ना। अपने अपने तो कौन ना वो दे।
1: हाँ देखा दिया सर, अरे मतलब
0: क्या मजे बोंग रहे? क्या
1: की हुआ सर?
0: मजे बोंग रहे?
1: सर नो
0: 9 और 8:30।
1: 9:30।
0: ओ, 9:30। अच्छा,
1: हाँ सर,
0: गोडो सो टेस्ट नहीं है?
1: आधा किलोमीटर जाऊँगा।
0: आधा किलोमीटर? अच्छा,
1: हाँ
0: माने दादा हमारे ना लुई ना अभी निजो जाए।
1: सर, तो आज जो चेकअप की हुई सर,
0: अर्जी चेकअप था इधर लिफ्ट है से।
1: बीमार ऐसे नहीं सर,
0: नहीं, लिफ्ट है से हुआ माने।
1: और लिफ्ट ऐसे हो है सर, लिफ्ट तो देखना सर, ऐसा ना कहा मैंने तो बोला मैं
0: तभी
1: सर।
0: बीमार, तभी बीमार हुए न हो तो कोई माने पानी ही गिरी थी वो। मुझे सलाम की दुआ दिखे, मुझे तक दिखले ते। अच्छा, तो अजी कना की बजे हुआ?
1: पुराना मूवी राजकुमार ऐसे, पुराना
0: किला मूवी, किला
1: 1996
0: मूवी ऐसे
1: पन्ना
0: हुआ?
1: राजकुमार।
0: दस दस कुमार। अच्छा, दस कुमार, दस तिमार, दस दस दस बत कना कितना था किसी बार स्पेलिंग अलग को मुझे
1: 1996 लगा सर, लगा सर।
0: 1996,
1: हाँ
0: 1996 लगा मूवी। अच्छा, कना ला नाम की असना?
1: मैंने लगा नाम पायल मेरी।
0: अच्छा, 1996 थे तो मूवी तो नहीं मिलाते। दाल दाल कुछ
1: ओ
0: भी ना की उसले।
1: राजकुमार का सर, हाँ
0: ओ, तो नहीं मिलाते। दिल तेरा दीवाना, दुल्हन गंगा पर के, और दुश्मन दुनिया का, ये तो चार्टा मूवी ऐसे 1996 लगा ना।
1: तो सौदागर
0: सौदागर। अच्छा, सौदागर तो था कि वो निशना।
1: अच्छे सारे तो बिटो भी पढ़ना है।
0: अच्छा, पैसे पैसे कितना करना?
1: नहीं रुकती, नहीं रुकती।
0: अरे मतलब सौदाकर ला मूवी ने, सौदाकर सौदाकर, इलू इलू, इमली का बोता, और तेरी याद आती है, तो चाटा ऐसे
1: हाँ
0: बनाते।
1: इतनी सारी तेरी याद आती है।
0: अच्छा, ठीक है, दीदी किसी ना से।
1: अच्छे सर,
0: अच्छा, कोई दीवी
1: सबसे पहला मेरा फेवरेट सर आज जैसे कब सर,
0: और इधर तो मूवी जानी जैसे
1: सही
0: कूलर।
1: होने वाला ना रहे हो, ना करने वाले सही
0: एक
1: बोलेंगे।
0: आया रुको, नहीं चिंता ना करो, मैं ऐसे मैं कोई दूंगा नहीं।
1: मंदिर आदि अंजलि देवासी आश्रिका रुको बोले मैं था तो पगे जमिया सफी वादर एडमन ना तो आखुश अमल बसुमतारी बिमल बसुमतारी धनंजय कासिम अली
0: अच्छा
1: माइ फागुरा माइकन मुंडा
0: अच्छा
1: कुलमणि बोरा और जिन्हें जमीन ऐसे सब के सर।
0: ঠিক আছে সুনীতা, আপনি ফোন কৰি দিয়াৰ পিছত থেংকস। আৰু গৰবাও যাবি দে,
1: ঠিক আছে
0: আৰু
1: স্যার,
0: শুনি কিনা এনজয় কৰিবি দে।
1: ঠিক আছে স্যার,
0: বাই বাই।
1: বাই।
0: Yes, this is that was Sunita. I don't like gana khuli ule munje she from the movie Sodagar. Kana nam se tere yaad aati hain. Gana kuri dishe Lata Mangeshkar, Suresh Vadkar. Music dishe Lakshmikant Pyarelal. Lyrics Anand Bakshi. Apni gana khuni gana enjoy kuri bhi.

0: हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग
1: जी, मैं तनुश्री बात कर रही हूँ, ग्राम गुनौरे, जिला सतारा, महाराष्ट्र.
0: हाँ जी, हमको पता है तनुश्री.
1: सर, हमारे श्रोताओं को बताना पड़ेगा ना.
0: हाँ, वो ही सही है, वो ही सही है. और
1: आपको पता है, हमें पता है, पर हमारे श्रोताओं को तो नहीं ना पता.
0: वो फिर जरूर पता होंगी, आपकी आवाज इतनी अच्छी है ना.
1: जी, थैंक यू.
0: और आज क्या, आज का दिन कैसा कैसा रहे
1: सर? आज का दिन ना मैं बताना चाहते हूँ सर, कल मेरा 25 जून को जन्मदिन है.
0: ओके, अच्छा.
1: और मैं बहुत आज खुश हूँ कि मेरा कॉल लगा, और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि कल भी मेरा कॉल लगे. तो मैं बहुत बहुत बहुत खुश हूँ सर.
0: अच्छा, आपका बर्थडे कब है?
1: कल है सर, 25 जून.
0: ओ, कल.
1: जी,
0: ओके. तो हैप्पी एडवांस, हैप्पी बर्थडे
1: एडवांस है, थैंक यू.
0: अच्छा, और आज क्या गीत सुनने चाहोगे आप?
1: जी सर, फिल्म का नाम है बर्फी.
0: बर्फी.
1: जी,
0: अच्छा, आप बर्फी खाती है कि नहीं?
1: मुझे बहुत पसंद है.
0: हमको भी बहुत पसंद है. अच्छा, गाने का टाइटल बोलिए.
1: इतनी सी हंसी.
0: इतनी की हंसी. अच्छा, गाने का टाइटल, आई थिंक इट्स गुड टू.
1: नहीं है बर्फी.
0: ना, मेरे पास है बर्फी की मूवी, लेकिन वो गीत की टाइटल नहीं है ना. अब
1: दूसरे में बताओ.
0: बर्फी है, गाना का नाम बर्फी. क्यों आशाएं फिर ले आया दिल, और मैं क्या करूं, और फता फती, और फिर ले आए. आई थिंक इस गाना को मैं क्या करूं, ये तो बचा रही वो.
1: जी सर, नहीं है वो गाना जो मुझे चाहिए, वो नहीं है इसमें.
0: अच्छा, तो दूसरे मूवी है आपके पास?
1: जी, पिक्चर.
0: क्या? हेलो,
1: पिक्चर.
0: थोड़ा स्पेलिंग बोलेंगे.
1: PI.
0: ओके,
1: पिक्चर का सर. उसमें मैंने आपके ही कोई माँ पर उसका गाना सुना था, पिक्चर फिल्म का.
0: ओ, पिक्चर. अच्छा अच्छा अरे पिक्चर का वो भी नहीं है. और
1: पर ज्यादा परेशान हुए, दूसरे में बताते हैं.
0: चलो,
1: दूसरे में याराना तो है सर, में उसमें गाना मैंने बताया था. पुरानी है सर
0: याराना. पुरानी या नई? ओल्ड.
1: पुरानी है, पुरानी.
0: अच्छा, गाने का टाइटल बोलिए.
1: जी, शुक्र मेरे मन को.
0: शुक्र मेरे मन को. अच्छा अच्छा, किशोर कुमार की आवाज.
1: ये गा के सुनाते हैं सर.
0: चलो चलो.
1: शुक्र मेरे मन को, किया तूने क्या इशारा, बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा. शुक्र मेरे मन को, ऐसे करके गाना है सर.
0: बहुत अच्छी तनुश्री, ऐसे ऐसे गीत की कोई लाए बाबा. इधर ही गाना कुछ कुरी थी भी. और डेडिकेशन से कि नहीं?
1: जी सर, मेरे पास है.
0: ओके, थैंक यू.
1: और मेरे पापा को भी डेडिकेट रहेगा. और अमोल भट्टाचार्य है, भगवान सिंह परमार, प्रेम सिंह सिकरिया, और हमारे सभी श्रोताओं को लाइव सुन रहे हैं.
0: अच्छा, तो थैंक यू. और तनुश्री, कल आपकी बर्थडे है ना. यू नो, स्पेंड इट वाइजली. बहुत अच्छी से यू नो स्पेंड योर बर्थडे इन अ गुड वे. ऑलराइट. And thank you. Thank you for calling.
1: Okay, bye bye.
0: And have a good evening. Bye bye.
1: Bye.
0: Yes, listeners, that was Tanushree. And yes, you know, it's always a good feeling. Tayo tay phoning kuya tay gana kure. And yes, tala gana kuning na ikdam kushi pa. So yes, tay aji movie, from the movie Yarana. Gana naman si Chukar Meri Manku. And gana namas gana kuti si Kishore Kumar music, Rajesh Roshan lyrics anjan. And yes, Kalita la birthday, so don't forget to wish her on her birthday tomorrow. So that's it. This is the track called Chukar Meri Man Ko.

0: हेलो, गुड इवनिंग।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रही है?
1: राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: अरे भगवान सिंह परमार, कैसे हो?
1: जी जी अच्छे हैं सर, और बहुत बढ़िया हैं। और आप कॉल मिल गया सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ।
0: अच्छा, और आज का दिन कैसे चल रहे?
1: तो बहुत अच्छा गया सर, आज हमारे यहाँ झमाझम बारिश हुई है, कल से हम बुआई करेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आज।
0: अच्छा, तो आज तो थोड़ा ठंड हो गई ना?
1: नहीं, हाँ थोड़ा बहुत है सर, अभी पानी गिर के बंद हुआ है, बाकी एक डेढ़ घंटा अच्छा पानी गिरा हमारे इधर।
0: अच्छा, तो बहुत ये भी बहुत अच्छी हुई है।
1: जी जी।
0: और बोलिए, आज क्या गीत सुनने चाहोगे आप?
1: सर फिल्म का नाम है अपना देश, और गाने के बोले कजरा लगा के गजरा सजा के बिजली गिरा के जइयो ना, नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के जइयो ना, अपना देश फिल्म का गीत है।
0: अच्छा, गजरा लगा के।
1: हाँ, अच्छा, गजरा लगा के गजरा सजा के बिजरू गिरा के जइयो ना।
0: अरे वो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज।
1: सर जी, जी बिल्कुल सर। और सर, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बिटिया का भी कॉल आया था महाराष्ट्र से, तनुश्री बिटिया को, उनको हम जन्मदिन की अग्रिम शुभकामना देना चाहेंगे सर, क्योंकि कल अगर हमारा कॉल नहीं मिलेगा तो क्या मालूम हम दे पाए कि नहीं दे पाए। आज ही से उनको बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं सर।
0: अच्छा, उसकी साइड से बहुत धन्यवाद। और आपको मैसेज भी कर सकते हैं ना कल?
1: जी जी, मैसेज भी कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो और डेडिकेशन से कि नहीं?
1: डेडिकेशन है ना सर, बहुत मेरे काफी मित्र हैं सर, शिवा लोहट जी हैं, तो तनुश्री बिटिया है, अंजलि भस्मतारी है, रमेश पात्र हैं, अमल भस्मतारी हैं,

0: और रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी शिमला से, आशुतोष जी अविनाश जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकन मुंडा जी, गंगाधर सावनकर जी हैं, और हमारे ग्रुप में से हैं सर हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप में से सुनील झा जी हैं और धीरज भाई रवाड़ी जी हैं। इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर, और आपको भी डेलीकेट रहेगा।
1: अच्छा, तो बहुत बहुत अच्छी,
0: लोकेन वर्मा जी भी सुन रहे हैं आपको।
1: ओके, तो सबको सबका हमारा बहुत बढ़िया हेलो,
0: धन्यवाद सर।
1: ओके, तो
0: सर गीत मिल गया मेरा?
1: ओके
0: जी जी सर, गीत मिल गया, फिल्म का नाम?
1: हाँ हाँ, मिल गया मेरे पास।
0: आप बिल्कुल सुना दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: अच्छा, तो सुनकर बहुत एंजॉय करिए
0: जी सर, धन्यवाद।
1: ओके देन, थैंक यू, बाय बाय। Yes, I'll be playing the track called from the movie Apna Desh, and Kanakuti Kishore Kumar and Lata Mangeshkar.

0: हेलो सर जी, नमस्कार।
1: अरे नमस्कार, कौन बोल रही है?
0: मैं रमेश प्रजापति बोल रहा हूँ।
1: रमेश जी कैसे हो?
0: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले रहा हूँ। हमारे घर गर्मी ज्यादा है, पानी नहीं गिर रहा अभी
1: आज भी गर्मी की आनंद ले रही है?
0: जी।
1: और बोलिए, आज का दिन कैसे चल रही है?
0: बढ़िया है। आज तो मैं घर डॉक्टर के पास गया था, दिन तो खैर ठीक है। हाँ
1: और फैमिली सब अच्छी है ना?
0: तबीयत ठीक है, मतलब वो थोड़ी आंख की प्रॉब्लम ही तो दिखाने के लिए गया था।
1: ओ, तो डॉक्टर ने क्या बोला?
0: वो ड्रॉप वगैरह दिया, जांच की है, बाकी
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: सब ठीक है।
1: अच्छा, तो आज क्या गीत सुनने चाहोगे आप?
0: गीत गाता फिल्म है क्या? गीत गाता चल, गीत गाता चल,
1: गीत गाता चल, वह देखूंगा है कि
0: जी
1: नहीं?
0: देखिए जी।
1: अच्छा, गीत गाता चल, अच्छा है।
0: उसमें है, मैं मुझे छोटा मिला वरता, जवानी कैसे कटे, ये सब कर गाना है।
1: मैं गीता, वो टाइटल सॉन्ग या क्या? मैं वो ही तर्पण, वो ही गीत का नाम, गीत
0: कितने कितने गाने उसमें?
1: 1 2 3 4 5 6 7,
0: तो मेरे को बताओ तो कौन कौन से। हाँ
1: धरती मेरी माता,
0: हाँ
1: घर गया गाना,
0: हाँ
1: बचपन हर गम से,
0: हाँ
1: शाम तेरी बंसी, शाम अभिमानी,
0: हाँ
1: मैं वो ही तर्पण वो ही,
0: हाँ
1: और टाइटल सॉन्ग गीता गाता चल।
0: अच्छा, पहला गाना सुनूंगा तो
1: अच्छा टाइटल सॉन्ग ना?
0: जी।
1: अच्छा, और डेडिकेशन है कि नहीं?
0: हाँ वो तनुश्री का बर्थडे है तो उसको भी आज मैं मिस कर देता हूँ। तो
1: अच्छा
0: बच्ची है, बच्ची है, उसको मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं उसके जन्मदिन की।
1: अच्छा अच्छा ओके,
0: और आपको रहेगा इस गाने को सुनाने के लिए।
1: अच्छा थैंक यू।
0: और भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज मोदी जी है, केसी सिंह राजपूत है, मणिलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और विदिशा से है, शिवा है विदिशा से, राकेश जी शिमला से, अविनाश जी है, और पूनम जी है कानपुर से, पूर्णमा जी है, संगीता जी है, आशुतोष जी है, लोकेंद्र वर्मा जी है, और धर्मवीर है दिल्ली से, और शिमला से भस्माकारी है, अमन अमन अमन भस्माकारी, देवन भस्माकारी, गोल्डी है, और रिक्कू रक्कू बिल्ले मिला नागालैंड से, अमर सिंह साहू जी है, रमेश पात्रे जी है, भाई को मुंडा है।
1: अच्छा, तो रमेश जी बहुत शुक्रिया आप कॉल करने के लिए।
0: जी, धन्यवाद आपको हमारा फोन रिसीव करने के लिए।
1: और आप आपके ख्याल रखिए। ओके
0: जी,
1: बाय बाय
0: बाय बाय।
1: यस लिसनर्स, इतना देखिए रमेश रहता है एकदम तलावत पे, एकदम यू नो बाल देखिए, ही सीम्स लाइक अ वेरी जॉली गाय टू। एंड इटू लास्ट, नॉट लास्ट बट This will be the track called Geet Gaata Chal. It's the title song by Jerry Wo. Or up near Hunin Se. Akash Fane from Check Up and Exo Teen Megas. The act of Bald Program is a phone in live program. Up near participate crew will in 0370224303 60. Up near Fata Fat, up near Tile Groovy. And up near Lagana. Our request, Potai Dibi.

0: Hello, good evening.
1: Hello.
0: Hello, good evening.
1: कि तुमने चाहा ही नहीं था वरना हालात बदल सकते थे. तुमने चाहा ही नहीं था वरना हालात बदल सकते थे. उसकी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे. बोते ठहरे रहे थे पानी और झील की तरह. बोते ठहरे रहे थे पानी और झील की तरह. अगर दनिया बन के रहते तो बहुत दूर निकल सकते थे.
0: वाह, क्या एंट्री था. हेलो हेलो
1: हेलो.
0: और यस, बहुत अच्छी एंट्री, बहुत अच्छी से एंट्री किए है आपने.
1: कि मत सताओ हमको हम सताए हुए हैं. कि मत सताओ हमको हम सताए हुए हैं. अकेला रहने का गम उठाए हुए हैं. खिलौना समझकर मत खेलो हमसे. हम भी इसी खुदा के बनाए हुए हैं.
0: और इस शायरी के पीछे कौन है.
1: कि आपको क्या मालूम आप कितने प्यारे हैं. आपको क्या मालूम आप कितने प्यारे हैं. जान है सुनने वाले श्रोताओं की जान से भी प्यारे हैं. किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला साहब. आप कल भी हमारे थे और आज भी हमारे.
0: ओके, तो कौन कौन बोल रही है.

0: मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, डिस्ट्रिक्ट चाकू वाला रामपुर, उत्तर प्रदेश, खंडिया गेट कॉलोनी से।
1: अमरजीत, वेल अमरजीत, वो शहरी के लिए बहुत बहुत यू नो इट वाज बहुत अच्छी थी अमरजीत।
0: लम्हों का इश्त नहीं सदियों की हिफाजत है, लम्हों का इश्त नहीं सदियों की हिफाजत है, कैसे करूं शिकायत, हर सांस को तेरी चाहत है।
1: तो अभिजीत, अमरजीत
0: जी,
1: आज क्या गीत सुनने चाहूंगी आप?
0: सर मूवी का नाम रहेगा नसीब, और इसमें गीत के वो रहेंगे, सीने पे रख के सर को तेरे सो गए थे हम, थे कितने करीब तेरे खो गए थे हम।
1: मेरी नसीब गाना का नाम, गाना का टाइटल,
0: फिल्म का नाम नसीब रहा है सर, वो गोविंदा वाली है ये, और इसमें गीत के बोले सीने पे रख के सर को तेरे सो गए थे हम, थे कितने करीब तेरे खो गए थे।
1: मेरे पास सिर्फ चार गानी है, चल मेरी भाई, जॉन जानी, मेरी नसीब, वो सिर्फ तीन है गाना।
0: तो सर ये मूवी आपने पुरानी वाली निकाल ली, तो मैं एक मूवी और बता दे रहा हूँ आपको। फिल्म का नाम रहेगा यादों का मौसम, और इसमें गीत के बोल रहेंगे कि दिल में फिर आज तेरी याद का मौसम आया।
1: यादों का मौसम, अच्छा अच्छा, गीत का टाइटल क्या है
0: जी? गीत के बोल रहे दिल में फिर आज तेरी याद का मौसम आया।
1: अच्छा, सुरेश वदेकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।
0: जी जी, क्या कहना चाहूंगा, गुलशन वाकी रहे तो गुल खिलते रहेंगे, गुलशन वाकी रहे तो गुल खिलते रहेंगे, अगर इस प्रोग्राम में लाइन फ्री रही तो बराबर इस प्रोग्राम में आपसे कॉल के जरिए मुखातिब मिलते रहेंगे।
1: अरे बहुत बढ़िया अमरजीत, और ये गीत के लिए आप डेडिकेशन है कि नहीं?
0: क्या सर?
1: डेडिकेशन है, डेडिकेशन कोई को डेडिकेट करना चाहूंगे ये गीत?
0: ना, मैं नाम लेना चाहूंगा और नाम तो लूंगा, मैं नाम लेने पहले से दो लाइन और कहना चाहूंगा।
1: अच्छा बोलिए।
0: तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं था मैंने, तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं था मैंने, सूख गया था वो तेरा गुलाब मगर आज भी फेंका नहीं है मैंने।
1: ओके, बहुत अच्छे आमिर जी, और आप डेडिकेशन है कि नहीं ये गाने के लिए, यादों के मौसम के मूवी के?
0: जैसे कुछ साथी लोग रहेंगे, जैसे बख्शाना दातागंज से विमल ठाकुर जी हैं, और ग्रामा पोस्ट हरहरपुर से सारू नूर अंसारी भाई रहेंगे, और रामपुर से मोहम्मद आदिल खान रहेंगे, भाई रफत साहब रहेंगे, और गफ्फार खान रहेंगे रामपुर से, मुरादाबाद से मुकेश कश्यप भाई हैं, फरमान भाई हैं, और मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी जी हैं, और मेरे कुछ फैमिली के लोग हैं, भाई लोग, जैसे बड़े भाई साहब ऋषि पाल है, बड़े भाई साहब अमर पाल है, छोटा भाई सुखवाल है, छोटा भाई शिवम है, साथ में यार दोस्त हैं जो आपके प्रोग्राम को सुन, भगवान सिंह परमार जी हैं। अच्छा। और इस रेडियो फरमाइश एकता ग्रुप के जितने भी साथी लोग सुन रहे हैं, और लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और हम प्यारे प्यारे सुनने वाले हैं साथ में अमरजीत में हम।
1: अच्छा, तो अमरजीत आप कॉल करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू सर, नमस्कार,
1: सुनकर एंजॉय करिए। ओके, बाय
0: बाय।
1: हाँ जी, दिस इज वो अमरजीत थी, और वो शायरी की बोछार दिया हमको, एंड यस वी से यू नो वेरी मच अप्रिशिएटेड, तो एकदम शायरी मान भावल कोई दिशे, एंड इतु बड़ा तय करने लास्ट कॉलर था कि वो के लिए मैंने मुझे तो शो दो 9:07:10 तक आज इतना टाइम हो बोले से, सो इतु लास्ट गाना बजाई दी वो फ्रॉम द मूवी यादों की मौसम, गाना लगा दाम से दिल में फिर आज। यस, एडू कना बजे वो तो इना करना एडू बीच दे अपनी खान 7:30 दे वेस्टर्न म्यूजिक असे, तो आरजेस चॉइस था वो, तो इतना ट्यूनिंग कर भी, और मोई राति दे 9:30 to 10 आरजेस चॉइस हिंदी फिल्म सॉन्ग लगा प्रोग्राम लुगिन आई वो, तो इतना दे लॉक करो, तो कौन कौन फोन इन करे, कौन कौन पार्टिसिपेट करे, सो मन की पीछे डर थैंक्स दिए से এনেকাই পার্টিসিপেট করে থাকবি, আর ফোন ইন প্রোগ্রাম থাকি লিবি, এস এম এস রিকুয়েস্ট প্রোগ্রাম থাকি বলে, আপনি কোন কোন পার্টিসিপেট করে, কোন কোন টেক্সট করে, কোন কোন ফোন করে, সব মানুষকে বেশি ডর থ্যাংকস দিয়ে আছে, আর এনেকাই শুনে থাকবি আকাশবাণী এফ এম ট্রাকোপ্যান 103 MHz-তে। দিস ইজ বিন ইউর আরজি টিম সেইং বাই বাই ফর নাও, এনজয় দ্য রেস্ট অফ দ্য ইভিনিং, অ্যান্ড এনজয় দ্য লাস্ট সং ফর দ্য শো, ফোন ইন প্রোগ্রাম।

वो भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

कोई तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की।

0: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा

0: विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान

0: द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Sop Sarkar Health Centers te BP laga free check up treatment aro kal phal thakibo laga motop dise BP laga kumba sawal thakile toll free number 1-800-116-666 call koribi BP hari ho desh chiti ho
1: kitu jankari NTEP bar dise
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: और लिसनर्स सबके वेलकम को ऐसे अपने वाला लास्ट शो FM ट्रैकर पैन 103 MHz थे और अपने गुनगुन दुनिया से सो मैंने वेलकम को ऐसे इधर शो 10 बजे तक बजाई रिबो। फर्स्ट गाना फ्रॉम द मूवी हम तुम इधर टाइटल सॉन्ग बजाई रिबो। गाना कुरी दिशे पपुल सुप्रियो एंड अलका याक्निक एंड म्यूजिक दिशे जतिन ललित, लिरिक्स पार्सन जोशी। यू विल गेट टू सी सैफ अली खान, रानी मुखर्जी इन दिस मूवी एंड राइट आफ्टर दैट फ्रॉम द मूवी कल हो न हो द ट्रैक कॉल इट्स द टाइम टू डिस्को। गाना कुछ शान, वसुंधरा दास, KK एंड लॉय मेंडोसा। म्यूजिक दिखे शंकर एशल लॉय, लिरिक्स दिखे जावेद अख्तर। यू विल गेट टू सी शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड प्रीति जिंदा इन दिस मूवी। सो आई गेस एंजॉय दिस बैक टू बैक ट्रैक्स। इट वॉज ए फ्रेश हम टू इट्स द टाइम टू डिस्को।